0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंग होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दें।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is... Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
5: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644।
6: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
5: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
7: बालियां, अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
5: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: खूबसूरत कार्पेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कार्पेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कार्पेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, Bradford, PA 8।
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ڈیئر فرینڈز، برادرز، ایلڈرز، لیڈیز اینڈ جنٹلمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل، آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو آل فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ فار لسننگ ٹو مائی فرسٹ ایلبم بائی دا نیم آف جلوائے جانا، دین اپریشیٹنگ اٹ اینڈ فردر انکریجنگ می to do more and more. Jalwai Jana was not an effort to sell albums, but to let you all know about the journey I had taken a few years ago. It was a journey towards enlightenment, and following Jalwai Jana, now I've done another album by the name of Mehboob-e Yazdan. Yazdan in Persian language means Allah Almighty. So, the beloved of Allah Almighty, which is Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In this album, I have incorporated work from some of the scholars, from like Mufti Taqi Usmani Sahab and others, and some of the stalwarts who have played a very, very important part in our lives. Iqbal, for once, as an instance, I have always been very, very inspired by his idea of a Muslim. So I've incorporated his work. I would like you all to listen to the album, and please do let me know what you have to say about it. Once again, thank you very much. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: 3 room 46 Ruli Avenue Bradford BD6 1DA phone 01274306567 behind Shell petrol station.
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
2: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, तवंगरी से नहीं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306-77.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: जी सामीन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, पुराना गीत था, लेकिन पुराने गीत ज्यादा अच्छे होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जो अल्फाज होते हैं, उनकी जो धुनें होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं, इसीलिए वो देर पा होते हैं और अब तक भी जब भी आप उन्हें सुनते हैं ना तो अच्छा महसूस होता है. जनाब तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया ड्यूसबरी से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. सबसे पहले आप ही ने आज कॉल की, हम तहे दिल से आपके मशकूर और ममनून हैं. प्रोग्राम की तारीफ और तौसीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश. ये आप ही जैसे लोग हैं तारिक भट्ट साहब जो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं, जो इसको तवानाई फराहम करते हैं. कहते हैं ना, ईंधन एक होता है ना जिससे वो चलता है प्रोग्राम, तो आप लोग माशाल्लाह से जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, खास तौर पर आप जब आ जाते हैं बड़ी हौसला अफजाई होती है, एक तकवीत मिलती है और मजीद प्रोग्राम खूबसूरत आप ही की वजह से होता है. बहुत नवाजिश. और आपने कहा कि बे से आप मजीद कुछ अल्फाज जो हैं वो बताएंगे दोबारा कॉल करके, तो हम आपकी कॉल के मुंतजर रहेंगे. आप जरूर कॉल कीजिएगा दोबारा और फिर ऐसे चंद अल्फाज अच्छे अच्छे बताइएगा जो बे से शुरू होने वाले हैं, कि जो आमतौर पर कम इस्तेमाल होते हैं. और गुजारिश ये है कि अगर मफहूम उनका माने भी साथ बता दे तो आपकी बहुत ही नवाजिश होगी. अलामा इकबाल नाजरीन से लिखते हैं, नाजरीन के लिए कहते हैं कि जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नजर, जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नजर, तेरा जुजाज हो न सकेगा हरीफ संग. ये जोर दस्त जरबत कारी का है मकाम, मैदान जंग में न तलब कर नवाए चंग, खूने दिलो जिगर से है सरमाया हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग. क्या खूबसूरत सामीन कराम बात है कि जिंदगी के हकायक पर इंसान को हमेशा नजर रखनी चाहिए. वो जो आंखें बंद के बैठ जाते हैं ना, सामने कुछ भी आ जाए, वो आंधी तूफान के डर से बाजू का, जैसे कहते हैं आम मिसाल है कि जी बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो उससे क्या ख्याल है आपका कि खतरा टल जाता है? ऐसा नहीं होता. और ऐसा कौन लोग करते हैं? कमजोर लोग करते हैं, बुजदिल लोग करते हैं. इंसान को वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जो शख्स भी अपने जो भी मामलात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तकालीफ परेशानियां आती हैं, और जिंदगी तो है ही इम्तिहान, जिंदगी में इम्तिहानात आते हैं, हर किसी का इम्तिहान मुख्तलिफ शक्ल में है. ये याद रखिएगा कि जिंदगी जो है ना वो फूलों का बिस्तर नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आप शाद रहेंगे, हमेशा आसानियां आपका मुकद्दर होंगी. हाँ, वक्त आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज्यादा इंसाफ करने वाला कौन है. वो किसी को, खुद उसने कह दिया कि किसी की जान जितनी एक जान एक तकलीफ उठा सकती है उससे ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता, ये खुद उसका कहना है. तो इतना ही बोझ वो डालता है इंसान पे जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है. अब ये अलहदा बात है, हर किसी की बर्दाश्त मुख्तलिफ है, और ये भी ऊपर वाले को मालूम है कि कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है. इसीलिए हम समझते हैं कि पता नहीं क्या कयामत आ गई, हम पे ये मुसीबत आ गई, हम पे ये तकलीफ आ गई, इस परेशानी का सामना है, तो शायद पूरी दुनिया में कायनात में हम ही हैं कि जिन पे ये मुश्किल आई. ऐसा नहीं होता. इसीलिए एक बुजुर्ग का कॉल है, एक आलिम का, वो कहते हैं कि जब भी, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये हदीस पाक भी है लेकिन अथेंटिक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते, एहतियात बहुत बेहतर होती है, कि अगर आपने खुश रहना है ना, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, बड़ा छोटा सा सिंपल सा असूल कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, अगर उसको आप हमेशा जहन में रखें, उसे अपना लें, तो फिर वो कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत आसान हो सकती है. सिर्फ कहते नहीं है, आप आजमा के देख लीजिए, यकीनन जिंदगी आसान हो जाती है. तो वो क्या कॉल है, क्या फार्मूला है कि अगर आपने खुश रहना है तो दीन में अपने से ऊपर वाले को देखिए और दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखिए. अब इसका क्या मतलब बनता है कि दीन में आप अपने से ऊपर वाले को देखें, दुनिया में आप अपने से नीचे वाले को देखें? इसका मतलब अफहम सामीन कराम जो हमें समझ में आता है वो ये बनता है कि आप देखिए कि आपका जो भी दीन है, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, जो भी आपका दीन है, उस दीन में कौन आपसे ऊपर है कि जो बहुत अच्छा उस हिसाब से, जैसे अगर आप मुसलमान हैं तो कौन दूसरा शख्स है जो बेहतरीन मुसलमान है या आपसे बेहतर मुस्लिम है, आप उसे देखिए. कि कौन ज्यादा परहेजगार है, कौन ज्यादा मुत्तकी है, कौन ज्यादा नेक है, अपने मामलात में सच्चा है, वफादार है, ईमानदार है। तो ये खूबियां जो होती है ना, ये वादे की खिलाफ वर्जी वो नहीं करता, ये सब शख्सी जो खूबियां होती हैं ये एक इंसान के किरदार को जाहिर करती हैं। तो दीन में अपने से ऊपर वाले को देखना ये हो गया, जो अपने फराइज पूरे करता है, पांच वक्त का नमाजी है, रोजे रखते हैं, वो जकात अदा करते हैं, हज अल्लाह ने कहा तो एक दफा जिंदगी में कोशिश करेंगे कि हज करने की, तो इन चीजों को देखिए उसके फराइज वो कितने अदा करते हैं और साथ ही साथ वो अपने मामलात में कितने अच्छे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज कि दीन में दुनिया में अपने से नीचे देखिए कि आप ये देखिए कि आपके पास अगर एक कमरे का घर है, कोई ऐसे भी हैं जो बेघर हैं, आपके पास अगर साइकिल मौजूद है, कोई ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। साइकिल तो छोड़िए, वो जो एक मिसाल आपने सुनी होगी, बड़ी आम सी मिसाल है कि जी किसी ऐसे शख्स को देखिए जिसकी टांगे ही नहीं है, जिसके पांव नहीं है, वो चल नहीं सकता, इस काबिल नहीं है, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है इंसान कि इस शख्स से तो हम बहुत बेहतर हैं। इसीलिए कहा गया कि दीन में अपने से ऊपर देखिए और दुनिया में अपने से इंसान को नीचे वालों को देखना चाहिए कि आप अगर चाहते हैं कि जी आपके पास बिलफर्ज औलाद तो है, बेटा नहीं है, आप चाहते हैं आपको बेटे की नेमत मिले, तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद ही नहीं, वो बहुत सी दुआएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं कि एक बेटी ही हो जाए। तो ये चंद मिसालें हैं, समझ आपको आ गई होगी कि दीन में अपने से ऊपर वाले को देखिए और दुनिया में अपने से नीचे वाले को जब आप देखेंगे तो यकीनन आप बहुत खुश रहेंगे। और यही जिंदगी के हकायक पर नजर रखने वाला शख्स यही करता है, वरना तो आप अपनी दुनिया में मगन रहिए, मस्त रहिए, आपको इल्म नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, फिर इंसान कट के रह जाता है दुनिया से, और इसका हुक्म नहीं है। वो पहले भी एक बात हुई थी, आपको याद होगा, शायद आपने प्रोग्राम सुना हो हमारा, कि जिसमें अशफाक अहमद साहब का जाविया था कि रहबानियत हमारे दीन में पसंदीदा नहीं है। हुक्म क्या है कि लोगों के बीच में रहिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। जाहिर है हर शख्स से आप नहीं मिल सकते, हर शख्स से आपकी नहीं बनती है, लेकिन आप अपने माशरे में अच्छे तरीके से रहिए। जिन लोगों से आपका जहन मिलता है, आपकी आदत मिलती है, आपके अतवार मिलते हैं, आप उनके साथ तो कम से कम मिलजुल के रहिए, अच्छे से रहिए। सिला रहमी का हमें हुक्म दिया गया, कताए रहमी का हुक्म नहीं है। और सिला रहमी अमूमन लोग ये समझते हैं कि जी हमदर्दी करना, किसी के काम आ जाना, तर्स खाना, ये एम्पथी और सिंपथी, ये सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी का असल जो मफहूम है वो है रहम के रिश्ते जो है ना, आपके जो माँ के पेट से रिश्ते बनते हैं, जो बहन भाई हैं आपके, सिबलिंग्स होते हैं, जैसे मजीद और ऊपर चले जाएं, पीछे चले जाएं तो खाला हैं, मामू हैं, तो उनसे नानी है, नाना है, आप उनके साथ बेहतरीन सलूक करिए, अच्छा सलूक कीजिए। सिला रहमी का मतलब ये है। हमने उसको समझ लिया कि बस ठीक है, सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्यों इसको गुनाह करार दिया गया कताए रहमी को, कि रहम के रिश्तों के साथ जो कता ताल्लुक ही करता है, जो अपने बहन भाइयों से बातचीत नहीं हो रही, जी कोई मसला आ गया तो बोलना छोड़ दिया, हम तो फलां बहन से बात नहीं करते, फलां भाई से हमारी नहीं बनती, या हम खाला से नाराज हैं, मामू से नाराज हैं, नाना नानी मौजूद हैं दुनिया में लेकिन हमें फुर्सत नहीं, या हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, तो ये चीजें गलत हैं। ये होती है सिला रहमी। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। हम ये गीत नाम करेंगे किनके, जनाब तारिक भट्ट साहब आप ही के नाम करते हैं। ये खूबसूरत सा गीत सुनिए और आप इंतजार करेंगे कॉल्स का कि आप हमें बे से शुरू होने वाले चंद खूबसूरत ऐसे अल्फाज बताइए जो आम इस्तेमाल में नहीं आते, और उनका मतलब भी बता दीजिए तो और मजीद हम आपके मशकूर होंगे। हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का 01274306677। बहरहाल सामीन अगर हम गीत लगाने लगे थे, लेकिन क्या हो गया कि वक्त जो है ना वो इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपके लिए गीत पेश करें, क्योंकि अगर गीत लगाया तो वो क्या है ना कि काटना पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि हम उसको काटें, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, हम क्या कीजिए जी, इकबाल का छोटी सी कुछ हम पढ़ देते हैं आपके सामने कलाम, वक्त थोड़ा सा ही है। जी हाँ, इकबाल कहते हैं कि ज़मीन व आसमां के बारे में, मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की नज़र में वो हो मौसम खिजां का, है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गो, ए मालिक राह फिक्र न कर सूदो जियां का, शायद कि जमीन है ये किसी और जहां की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहां का। दोबारा दोहराते हैं, मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिजां का, है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गू, ए मालिक ए सालिक रह फिक्र न कर सूदो जियां का, शायद कि जमीन है ये किसी और जहां की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहां का। और हुस्ने इत्तफाक देखिए, सुभान अल्लाह, कि जो अभी बात कर रहे थे ना हम, वही बात यहाँ पे एक लिहाज से कही गई कि हम जिसे बहार समझते हैं दूसरों की नजर में हो सकता है वो खिजां हो, और सिलसिला अहवाल क्या है, ये तो हर वक्त दिगर गूंगी है, मुश्किलात ही हैं, तो राह पर चलने वाले तू सूदो जियां का की फिक्र ना कर, यानी कितना नुकसान हुआ और कितना जो है फायदा हुआ इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। चलिए अब लेते हैं एक ब्रेक।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
5: Majiz Samine Karam, is waqt aap samaat farma rahe hain Bradford Asian Radio ki nishiyat 1413 AM pe. Yehi nishiyat pahunch rahi hain online aapke paas bradfordasianradio.co.uk ke zariye, aur iske ilawa प्लस डैप के जरिए चंद इलाकों में आप हमारी नशियात सुन पाते हैं। साथ ही साथ हमारे स्मार्ट ऐप के जरिए, जो फोन ऐप है, आप उसके जरिए भी हमारी नशियात को सुन सकते हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, और हमें फोन किया था चौधरी रुखसार साहब आपने। पहली बात तो आपसे शिकवा ये है कि 2 हफ्ते की गैर हाजिरी है आपकी, आप तशरीफ नहीं लाए। जाहिर है बावजूद नहीं लाए होंगे आप तशरीफ, लेकिन ये समझ नहीं आई कि उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही थी फोन पे, एकदम से बिल्कुल आपकी आवाज गायब हो गई। तो आपसे गुजारिश है चौधरी रुखसार साहब कि आप दोबारा आप प्रोग्राम में तशरीफ लाइएगा ताकि आपसे बात हो सके। आफ्ताब साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने के लिए भी। आने वाला गीत आपके नाम हम करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में अलामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है, उनका जो मुंतखब कलाम है, वो हम आपके गोश गुजार करते हैं गाहे बगाहे। इसके अलावा हमने आपसे गुजारिश कर रखी है तमाम सामईन से कि बे से जो हरूफ तहजी होता है ना, बे ब, तो उससे आप अल्फाज उर्दू के कुछ ऐसे बताइए हमें कि जो आम इस्तेमाल तो नहीं होते, और उनका मफहूम भी बता दीजिए, तो आपकी बहुत नवाजिश। सिलसिला ये हमने इसलिए प्रोग्राम में शामिल कर रखा है कि हमारा ज़खीरा अल्फाज जो है ना, वो मजीद बढ़े। उर्दू बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी सी जबान है, लश्करी जबान इसे कहा जाता है, इसलिए कि इसमें बहुत से फारसी के अल्फाज हैं, अरबी के अल्फाज हैं, पंजाबी के अल्फाज इसमें शामिल हो जाते हैं, और उर्दू तो है ही, इसके अलावा संस्कृत जो बहुत पुरानी जबान है, उसके भी अल्फाज इसमें पाए जाते हैं। तो ये लश्करी जबान इसलिए कि हर तरह की जो जबान है ना, उसके अल्फाज को ये अपने अंदर इस तरीके से समो लेती है कि जब आप बोलते हैं ना, उसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो महसूस ये होता है कि ये उर्दू ही जबान का लफ्ज़ है। तो इसलिए इसकी बड़ी खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात कि ये इसलिए भी पसंद है कि ये बड़ी महज़ब, बड़ी शाइस्ता, तहजीब याफ्ता जबान है। इसमें आप जनाब, हजूर वाला का इंतखाब किया जाता है, तू होता है, तुम होता है, और उसके बाद फिर वही आप वाला सिलसिला शुरू होता है। तो ये सामईन कराम, बहुत अच्छा लगता है, हर रिश्ते का अलहदा एक मकाम होता है और उसको उसके नाम के हिसाब से पुकारा जाता है। ये उर्दू जबान की बड़ी खूबी है, बड़ी खसूसियत है। तो चलिए, अब ये जो आने वाला गीत है आफ्ताब साहब, आपके नाम हम करते हैं, और आपसे भी गुजारिश है कि दोबारा शामिल होके आप हमें बताइएगा बे से इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज। और जो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अल्ताफ फातिमा का नावल दस्तक न दो, उसको जरूर सुनिएगा, यकीनन आप उससे बहुत महजूज होंगे। तो ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं, सुनते रहिए और प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं 01274-306-77।

जी मौजूद सामीन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। किसी की हार का मसला था, किसी की जीत का मसला था, मनाई जा रही थी खुशियां और कहीं गम। जाहिर है जो जीतता है वो हमेशा खुश होता है, जो हारता है वो गमगीन होता है। अब हालांकि अगर जिंदगी के हकायक पर नजर दौड़ाई जाए तो नामालूम कौन जीता और कौन हारा, ये इंसान को पता नहीं होता कि असल हार किसकी है और असल जीत किसकी है, वो पता बाद में चलेगा। फिलहाल इंसान सिर्फ जो है ना, जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं वक्ती तौर पर, उन्हीं को सच समझ लेता है। और वही इकबाल ने कहा था शायद कि जिंदगी के हकायक पर इंसान को नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, अब मसला ये है सामीने कराम के बहुत सी कॉल्स मौसूल हुई, बहुत सी कॉल्स मौसूल हुई हैं, लेकिन दो चार लोगों से बात नहीं हो पा रही है, बिल्कुल हमें आवाज आपकी नहीं आ रही। अब ना मालूम कि लाइन में कुछ मसला है, कोशिश तो कर रहे हैं कि उसको हम अगर बेहतर हो सके, ठीक हो सके, तो हम जरूर कोशिश करेंगे। हम खुद इस बात को समझते हैं। समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने कहा कि कॉल आप कर रही हैं लेकिन लाइन जो है ना वो बात नहीं हो पा रही। अब ना मालूम क्या मसला है, ये गीत आपको सुनाएंगे तो उसके बीच में इस दौरान हम चेक करते हैं कि क्या मसला दरपेश है। उससे पहले आपको एक खूबसूरत सा वाक्या सुनाते हैं तारीख की औराक से। कुछ लोग सामने कह रहा बहुत हसास होते हैं, बहुत वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, इर्द गिर्द के लोगों से उनको बड़ा ताल्लुक होता है और वो बहुत इस तरह से नहीं, उन्हें दर्दमंद भी कहा जाता है, हसास भी कहा जाता है, उन्हें नर्म दिल भी कहा जाता है, काइंड हार्टेड जिसे आप कहते हैं। तो देवबंद में एक मौलाना सैयद असगर हुसैन रहते थे, देवबंद की ये बात है, वो बड़े हसास तबा थे। तो उनका जो मकान था, और ये काफी पुरानी बात है सामीने कराम, बरेज़गीर पाको हिंद जब था ना इकट्ठा पाकिस्तान और इंडिया, तो काफी साल पुरानी बात है, तकरीबन आप कह लीजिए कि 100-125 साल पहले की बात है। उनका वहां पे मकान कच्चा था, तो होता क्या था कि जब भी बरसात आती हर साल, तो उस मौसम में उससे पहले उसकी लपाई होती थी। बहुत से लोग जाहिर है अपने घरों की लपाई करते थे जब जिनके कच्चे घर होते थे। तो एक मरतबा कुछ ने अर्ज की कि मौलाना आप तो अच्छे खासे मशहूर आदमी हैं, आपके घर आया गया बहुत है, तो क्यों नहीं आप इस मकान को पुख्ता करवा लेते, यानी पक्का करवा लेते ईंटों का या उस तरह से गारा मिला के, तो आपको ये हर साल की तकलीफ से भी निजात मिल जाएगी, ये जो आपको लपाई करानी पड़ती है, इतनी आप खुद मेहनत करते हैं, तो आपके इतने दोस्त अहबाब हैं, साथ ही साथ आप इतने शागिर्द हैं, तो आप किसी को कहिए और आप अपना मकान पक्का करवा लीजिए। मौलाना सैयद असगर हुसैन ने फरमाया कि वाकई आप साहिबान की यह राय बड़ी माकूल है। फिर कुछ देर उन्होंने तवक्कुफ किया, यानी रुक गए, सोचा, और फिर उसके बाद आहिस्ता से बोले, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उसमें सारे मकान कच्चे हैं, अगर मैं अपना मकान पुख्ता करवाता हूं तो गरीबों को अपनी नादारी का एहसास और ज्यादा शदीद हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। और तब तक उन्होंने, सामीने कराम ये तारीख में आता है, अपना मकान जो है वो पुख्ता नहीं करवाया, यानी पक्का नहीं करवाया, जब तक कि उनके मोहल्ले के आसपास के मजीद ज्यादा मकान जो थे वो पुख्ता नहीं हो गए। ये सामीन होता है एहसास करना लोगों का। आज क्या है, और ये यकीन जानिए जिस मुल्क में हम रहते हैं, बहुत इस मुल्क की एक और अच्छी बात, एक और खूबसूरत बात, यहाँ की गवर्नमेंट की कह लीजिए या जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, कि वो आप देखिए कि एक घर है आपका हमसाये में, अगर आप अपने घर में कुछ मजीद तौसी करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, या आप एक्सटेंशन जो भी जिसे कहते हैं करना चाहते हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसकी परमिशन ना मिले, इजाजत ना मिले काउंसिल से। तो क्यों इजाजत ना मिले, काउंसिल को मसला नहीं होता, जो आपके हमसाए हैं ना इर्द गिर्द वाले, अगर उनकी धूप रुक जाती है, आप मकान अपना ऊंचा कर लेते हैं घर, अगर उनका और कुछ मतलब पर्दे का मसला आ जाता है, उनकी प्राइवेसी में कुछ मसला आता है, तो इसलिए काउंसिल आपको इजाजत नहीं देती कि दूसरे अगर डिस्टर्ब होते हैं ना, पड़ोसी, जो कि इस्लाम में बड़े हकूक रखे गए पड़ोसी के, लेकिन हम कहाँ पूरा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जिसे कहा जाता है ना कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो ऐसे है वैसे है, यहाँ की गवर्नमेंट
پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا خیال کرتی ہے کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی، کسی دوسرے کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں اگر مسئلہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ایکسٹینشن کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، یہاں اونچے اونچے گھر نہیں بنائے جاتے، پوری اسٹریٹ دیکھ لیجئے ایک طرح کے گھر ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کون اندر سے امیر ہے، کون غریب ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے۔ لیکن آپ دنیا میں دوسری جگہوں پہ جائیے، بہت سی جگہوں پہ، اور وہاں کیا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے کالونی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے اونچے اونچے گھر ہیں، اونچے اونچے کیا، بڑے بڑے گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، محل نما گھر ہیں۔ کیوں؟ ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ اور صاف پتہ چلتا ہے جی یہ امیر شخص کا گھر ہے، یہ غریب شخص بیچارے کی جھونپڑی ہے۔ تو تضاد یہ جو ہے نا، یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مروت کے منافی ہے، یہ حساسیت کے منافی ہے، یہ دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا کہ جی اس سے کس کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کے۔ آپ معاشرے میں کچھ اچھی مثال قائم نہیں کر رہے اگر آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ مولانا سید اصغر حسین جیسا دل ہمارا بھی ہو کہ ہم آگے پیچھے جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ لوگ کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی ہمارے کسی عمل سے۔ تو لیجیے سمیرہ صاحبہ، خوبصورت سا آپ کے لیے گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے، آپ ہی کی پسند کا یہ گیت ہے سمیرہ صاحبہ۔ اب لائنز کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس میں آواز کیوں نہیں آ رہی، کالز تو موصول ہو رہی ہیں بہت، لیکن ہماری آواز نہ معلوم آپ کو جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ہم تو ہیلو ہیلو کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ گیت سمیرہ صاحبہ آپ کی پسند کا سنیے گا۔ اور طفیل صاحب آپ نے فون کیا تھا، بہت شکریہ، بڑی نوازش، یہ گیت آپ کے لیے بھی، لیجیے سنیے گا۔ Okay.

वारी, लेकिन ध्यान से सुनती रहती। बहस ना करने पर भी उसको बड़े मनतकी और हकीकत पसंदाना दराइल सुनना पड़ते थे। देखो, दौलत ही से इंसान दूसरों की नजर में मुअज्जज होता है, पैसा ना हो तो चार दिन में कदर गिर जाती है। और वो खामोश बैठी खला में तकती होती। उसकी नजर से गिर्दो पेश की हर चीज, हत्ता के सामने बैठी अम्मा बेगम तक ओझल हो जाती। सिर्फ उनकी आवाज और नपे तुले लफ्ज कानों में आते रहते। ये सब बकवास है कि उनकी उम्र ज्यादा है। देखो, ये कम उम्र लड़के बड़े गैर जिम्मेदार होते हैं। उनके लिए तो बस मामूली घरों की पली हुई और सख्तियां झेले हुए लड़कियां ही मुनासिब होती हैं। तुम जैसी लड़कियों के लिए भारी भरकम और संजीदा शौहर ही अच्छे होते हैं। देखो, हमने तुमको बड़े नाजो नोम से पाला है, तुम्हें तकलीफ की आदत नहीं है। आसाइश ही जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तकलीफ की आदत नहीं है, तकलीफ की आदत नहीं है, अरे मुझे अब कम तकलीफें हैं, वो बागियाना अंदाज से सोचती, लेकिन इंतहाई बुजदिली से मसमसी शक्ल बनाकर इत्तला दे दी, अम्मा बेगम जोहर की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। और जब जुबैर को न जाने किस तरह इल्म हो गया कि अम्मा बेगम का ख्याल है कि ये मामूली घरों में पले हुए लड़के बड़े घुटे हुए होते हैं, ये मिडिल क्लास में पैदा होते हैं और वैसी मिडिल क्लास किस्मतें भी लेकर आते हैं, तो वो और तो और सौलत तक से रूठ गया था। लानत तुम सब बड़े घरों में पलने वालों पर, रिश्तेदारी है तो क्या हुआ, कभी तो तुम्हारी सूरत देखूंगा नहीं, जुबैर ने दिल ही दिल में सोचा और बड़ी बेनियाजी से अपने रोजमर्रा में मसरूफ रहा। सब बेकार बात है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती, उसने झूठ मूठ अपने दिल को समझाया और दूसरे दिन के लिए बैठकर पहले से भी ज्यादा जोरदार ऑडिटोरियल लिखना शुरू कर दिया। और सौलत जहांगीर से उसने यह भी ना कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं और अब तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि मैं कोठी बंगलों की बजाय एक मुख्तसर से कदीम तर्ज के घर में पला बड़ा हूं। जब वो उससे एक दिन राह चलती मिली और बात करने लगी तो उसने कहा, माफ करना, मैं इस वक्त जल्दी में हूं, मुझे अखबार के मैनेजर से अभी जाकर मिलना है, तुम जानो नौकर आदमी हूं मैं, तो ये बातें और बातों का क्या है, उनके लिए तो जिंदगी पड़ी है। उसकी आवाज में बेताल्लुकी और इस्तकलाल था, लेकिन जब वो अपनी साइकिल पर दोबारा चढ़ने लगा तो उसने देखा कि उसका चेहरा बेहद खामोश और हमेशा से ज्यादा राजी बराजा नजर आ रहा था। फिर हर शख्स समझता रहा कि सौलत खुश है और मुतमईन, सिवाय उस गौतम बुद्ध किसी शक्ल वाले चीनी लड़के के। सफदर यासीन, तुम बुद्ध मजहब के हो या ना हो, लेकिन तुम बुद्ध जरूर हो, तुम्हारा कल्ब और जहन रोशन है, तुमने मेरे दिल का हाल कितनी जल्दी समझ लिया था। उसने जुबैर की तस्वीर उठाई और उस चेहरे को देखा जिसकी खामोशी और मस्कीनी ने उसको लाजवाब तौर पर हसीन बना रखा था। अच्छी बात है जुबैर खां, अगर तुम अकड़ना जानते हो तो सौलत जहांगीर भी मुगले आजम की औलाद है। और उस शाम उसने अम्मा बेगम को अब्बा मियां से कहते सुना, अब तो सौलत खुश है और कल तो वो आसिफ चाह के साथ सिनेमा भी खुशी खुशी गई थी, कितनी प्यारी लग रही थी उसके साथ बैठी हुई। अब्बा मियां कीड़े में बसे हुए हुक्के की खूबसूरत नय मुंह में दबाकर मुसलसल गुड़गुड़ किए जा रहे थे, गोया उनको इस बात के यकीन करने में तामुल हो। और जब वो वापिस आए तो आसिफ चाह ने उसको बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा और गुलाब के ढेर भर फूल खरीद कर दिए थे। जी हाँ, वो बेहद खुश थी कल तो, और आसिफ तो कह रहा था, अम्मा बेगम ये तो अभी बिल्कुल बच्ची है। बरामदे के सतून की आड़ में खड़ी हुई सौलत उनकी बातें सुनते सुनते खला में पहुंच गई थी। उसके कानों में अम्मा बेगम की बजाय सफदर यासीन की नौ उम्र शुस्ता और मुतरन्नम आवाज आ रही थी। मैं शहनशाहों की औलाद को ली के असूल किस तरह सिखाऊं, और मैं चंद जी नजीबों की सिफात किस तरह उनके जहन नशीन कर सकता हूं। ये सिर्फ चंग यानी कि इसका मतलब है दूसरों का लिहाज करने की करामत है जो मैंने अपनी जबान बंद कर रखी है। हाँ अम्मा बेगम, ये सिर्फ चंग की करामत है जो मैंने अपनी जबान बंद कर रखी है, या फिर मेरी कम हिम्मती, उसने चुपके से सोचा और दबे कदमों वहां से चली आई।
ये सामीने कराम आज का चैप्टर था दस्तक ना दो का, कि वो जो सौलत मिर्जा जिसकी शादी होने जा रही है एक बहुत उधेड़ उम्र के शख्स से, वो खुश नहीं है अंदर से, लेकिन उसको वो जो फेरी वाला चीनी लड़का है जो सामान बेचने आता होता है उनके घर पे, उसने जो उसको समझाया और सिखाया था उसकी बातें उसको सुकून देती हैं कि ये चंग की करामत है। चंग क्या है? दूसरों का लिहाज करना, जिसे हम कहते हैं ना कर्टसी, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुरव्वत। तो बहुत से लोग बड़े बामुरव्वत होते हैं, चलिए एक और लफ्ज मिल गया बासे बसे कि बामुरव्वत, कि जो दूसरों का लिहाज करते हैं बहुत ज्यादा। और ये बड़ी बहुत बड़ी खूबी है सामीन कराम, कभी सोचिएगा इसके बारे में, ये कितनी बड़ी खूबी है। जो लोग मुंह पे जवाब दे देते हैं अगले का, जिसे कहते हैं ना कि लिहाज ना करना, बदीद उसको कहते हैं, बदीद अब ये पंजाबी का लफ्ज है, उर्दू में उसे क्या कहते हैं सोचेंगे। तो बहरहाल हमें फोन किया था समीरा साहिबा ने और चौधरी रुखसार साहब ने और जरका साहिबा ने, और अल्फाज बताए हमें। समीरा साहिबा ने क्या अल्फाज बताए? बज्म, बेसे, बेसे बेकरारी, यानी जब इंसान को चैन करार नहीं होता, बेसकून होता है। बेखुदी, बेखुदी का मतलब होता है इंसान अपने आप से बेगाना हो जाए, उसको इल्म नहीं होता, उस वक्त वो अपने आप में नहीं रहता। बर्क, बर्क का मतलब होता है बिजली। भेद बताया आपने समीरा साहिबा, भेद क्या मतलब है, यानी कि किसी की ऐसी बात जो छुपी हुई हो। बका बताया आपने, बका का मतलब है कि कायम रहने वाली चीज। भीनी, भीनी आपने बताया, वो जो खुशबू होती है बड़ी मध्यम सी, बड़ी हल्की सी, उसे कहते हैं भीनी भीनी। भंवरा जाहिर है एक इंसेक्ट है, उसका भंवरा जो है वो हशरातुल अर्ज में से है। बेनियाजी, बेनियाजी होता है लापरवाह होना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, इंसान बेनियाज हो जाता है बाज़ोकात। बसीरत, बसीरत आपने बताया, एक होती है आंख से देखना, एक होता है आप अपनी अकल, अपनी दानिश, अपनी अकलमंदी से आप देखते हैं, दूर तक आप देख पाते हैं, यानी और वैसे कहा जाए तो चीजों की जो हकीकत होती है ना असल, उसको जो देख पाता है, समझ जाता है, वो होता है बसीरत। बातिन, बातिन यानी इंसान का अंदर, जिसे हम रूह भी कहते हैं, जिसे कल्ब भी कहा जाता है, तो बातिन इंसान का होता है। बगोला आपने बताया एक और लफ्ज, बगोला क्या होता है? आग से बना होता है, वो जो आग का गोला सा होता है ना, उसे बगोला कहते हैं। तो ये समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बेहद नवाजिश। बज़्म, बेकरारी, बेखुदी, बर्क, भेद, बका, भीनी भीनी, भंवरा, बेनियाजी, बसीरत, बातिन, बगोला, ये सब आपने हमें अल्फाज बताए। तहे दिल से आपके समीरा साहिबा मशकूरो ममनून। चौधरी रुखसार साहब, आपने क्या अल्फाज बताए थे? आपने सबसे पहला तो लफ्ज बोला जी बिस्मिल्लाह, बेशक शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह। फिर आपने बताया बिशारत, यानी किसी को नवीद देना, खुशी की बिशारत देना, बिशारत होता है। बाशऊर आपने बताया, हर शख्स को बाशऊर होना चाहिए। बाशऊर कौन होता है? जिसकी अक्ल, उसका जहन काम करता है, दानिश उसमें होती है, वो होता है बाशऊर, जो आगे ही रखता है। एक आपने लफ्ज बताया बिद्दत, बहुत कहिए कि अहम लफ्ज है। बिद्दत क्या होता है? अगर इसको देखा जाए तो ये आप जो भी आपका मजहब है उसमें अगर कोई आप ऐसी नई चीज, खसूसन इस्लाम में जो कुरान में मौजूद नहीं है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित नहीं है, अहदीस से, तो वो आप नई चीज दीन में जो शामिल कर लेते हैं, खा वो सवाब ही की खातिर हो, सवाब ही के लिए हो, लेकिन वो बिद्दत कहलाती है। अब उसकी मिसाल क्या है, छोटी सी मिसाल भी दे दें कि जैसे नमाज है तो फजर के दो फराइज हैं, दो सुन्नत हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं हम तीन फर्ज पढ़ लेते हैं, चार फर्ज पढ़ लेते हैं दो की जगह, वो बिद्दत होगी। हालांकि आपका मकसद या नीयत इंसान की हो सकती है कि जी वो मजीद अल्लाह की इबादत करना चाहता है, लेकिन जो एक सेट चीजें हैं ना, उनमें अगर आप नई कोई चीज शामिल कर लेंगे तो वो बिद्दत कहलाएगी। एक है बदगुमानी आपने बताया लफ्ज, कि किसी के बारे में गलत बयान गुमान करना या बुरा गुमान करना। बाइखलाक, बाइखलाक तो सब जानते हैं, जो बड़ा कर्टियस होता है, बहुत तहजीब याफ्ता होता है शख्स, उसका अच्छा इखलाक होता है, तो उसे कहते हैं बाइखलाक। बलागत आपने बताया, बलागत होती है कि वो बहुत ज्यादा, जिसका नॉलेज हो, इल्म हो जिसका, तो वो अपनी जब जबान इस्तेमाल करता है, बोलते हैं, तो उसमें बलागत होती है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये हमने सिलसिला शुरू किया है, ये
حروف تہجی کا، تو وہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کا ہوگا، ذخیرہ الفاظ آپ کا مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، تو پھر آپ کی بول چال میں بلاغت آ جاتی ہے. پھر آپ نے بتایا بغاوت. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی چیز کے خلاف جب جاتے ہیں تو پھر آپ بغاوت کر دیتے ہیں، اس کے الٹ چلتے ہیں جب آپ. اور زرکا صاحبہ آپ نے بھی اتفاق کی بات ہے، سب سے پہلا جو لفظ بولا بے سے، آپ نے کہا جی بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، بے شک بسم اللہ ہو گیا. آپ نے بتایا باطل، بڑا خوبصورت لفظ. باطل کیا ہے؟ ناحق کہہ لیں اس کو، باطل کو جھوٹ کہہ لیں اس کو، اس کو آپ غلط کہہ لیں تو یہ باطل ہوتا ہے. بے وفا، جس میں وفا نہ ہو، جو وفا نہ کرے اسے بے وفا کہا جاتا ہے. بارش آپ نے بتایا، بادل آپ نے بتایا، ہاں بابل بڑا خوبصورت لفظ، باب جو ہوتا ہے اس کو بابل بھی کہا جاتا ہے، تو بابل آپ نے بتایا. پھر آپ نے بتایا بے شک، یعنی جس چیز میں کوئی شک شبہ نہ ہو، وہ یقینی ہو وہ چیز. تو زرکا صاحبہ تہ دل سے آپ کے بھی مشکور و ممنون، بہت آپ کی بھی نوازش، بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے ہمیں دیے. اور اب چودھری رخسار صاحب، آپ نے جس گیت کی فرمائش کی تھی ہم نے کیوں کر رکھا ہے، لیکن فی الحال یہ پرانا سا ذرا گیت سنیے گا. یہ زرکا صاحبہ آپ کی فرمائش ہے، آپ نے فرمائش کی تھی پہلے لتا کا گیت کوئی لگا دیا جائے، تو یہ خوبصورت سا گیت زرکا صاحبہ آپ کے لیے. اور عذرا صاحبہ آپ دوبارہ شامل ہوئی تھی، آپ نے کہا سمیرہ صاحبہ کے لیے خوبصورت سا گیت لگا دیا جائے، تو یہ گیت ہم آپ کی جانب سے سمیرہ صاحبہ کے لیے لگاتے ہیں. مسز احسان آپ شامل ہوئی پروگرام میں، آپ نے کہا جی پروگرام آج پہلی مرتبہ سنا، اچھا لگا. آپ نے کہا کہ آپ شامل بھی ہو جائیں، تو بہت شکریہ، بہت نوازش مسز احسان. آنے والا گیت ہم آپ کے نام بھی پیش کرتے ہیں، اور اس گیت کے بعد جناب چودھری رخسار صاحب آپ کا فرمائشی گیت ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. فی الحال اسے سنیے گا.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और जिस सामने का नाम आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे पूरी दुनिया में ये आवाज पहुंच रही है इंटरनेट के जरिए bradfordasianradio.co.uk हमारा वेबसाइट का पता, और साथ ही साथ ये आवाज पहुंचती है हमारे स्मार्ट ऐप के जरिए आपके मोबाइल फोन पर। आप जहां कहीं भी हो, नेट हो, तो हमारे प्रोग्राम से आप लुत्फंदोज हो सकते हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। समीने कराम, यही खूबसूरती होती है इन प्रोग्राम्स की, और जो हमारे मौजूद सामईने कराम हैं, जो हमारे कॉलर्स हैं, चौधरी रुखसार साहब, यह आपकी फरमाइश का गीत था, पहली मरतबा हमने सुना, हकीकत है बहुत अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत गीत था, बड़ा सोलफुल टाइप गीत था। तो देखिए ना, समीरा साहिबा फरमाइश करती हैं ऐसे गीत होते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने, और खसूसन ये जो पंजाबी के गीत होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मौसीकी जो है उसकी कोई ज़बान नहीं होती। हमारे बच्चे जो हैं वो सुनते हैं, कोरियन गीत सुनते हैं, स्पेनिश सुनते हैं, और हालांकि उनको तो शायद थोड़ी बहुत समझ आती होगी, हमें तो समझ नहीं आती जाहिर है। हाँ, सुन सुन के बस थोड़ा बहुत आ जाता है बोलना, लेकिन मफहूम क्या है, मतलब क्या है, आपको पता है आजकल तो ट्रांसलेटर्स भी मौजूद हैं, ऐप्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए आप ज़बानें मुख्तलिफ सीख सकते हैं। तो बात यह हो रही है कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती, ऐसा कोई मज़हब नहीं होता। कहीं का भी गीत हो, एक बड़ा ज़बरदस्त गीत याद आ गया, ऊते पापा ऊते, तो बस वो जहन में आ गया। तो बहरहाल ये चौधरी रुखसार साहब, बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत सा गीत सुनने को हमें मिल गया। और समीरा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे अच्छे गीत जब आप बताती हैं और वो हम फिर गीत ढूंढ के लगाते हैं आपके लिए, खुद भी सुनते हैं जाहिर है, जो थोड़ा बहुत वक्त अगर मिल जाए, अगर मसरूफियत ज़्यादा ना हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो तन ब तकदीर अलामा मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं इस हवाले से, वो कहते हैं इसी कुरान में है अब तर के जहां की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया महपरवीन का अमीर। तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। देखिए बेस एक और लफ्ज आ गया, बतदरीज यानी कहते ना ग्रेजुअली अंग्रेजी में, कि जैसे क्या कहते हैं, कदम ब कदम कह लीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप जो होता है उसे कहते हैं बतदरीज। तो था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। शायद आपको समझ आई हो इसकी, कि तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये इकबाल ने तकरीबन 150 साल पहले लिखा, कि जब इंसान गुलामी का शिकार हो जाए ना, कौमें गुलाम जो बन जाती हैं, उनका ज़मीर जो है वो भी मुर्दा हो जाता है, उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है हालात। वो जो बेसे लफ्ज़ बताया था समीरा साहिबा ने, और शायद गालिबन जरका साहिबा ने भी, समीरा साहिबा ने बताया था बदगुमानी, ये चौधरी रुखसार साहब आपने बताया था, और साथ ही साथ बेनियाजी, समीरा साहिबा ने लफ्ज़ बोला था बेसे, दोनों का तीनों का एक ही मतलब है, कि इंसान फिर बेनियाज हो जाता है, हालात क्या हो रहे हैं इर्द गिर्द हमारे, किस तरह से चल रहा है, बस ठीक है, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं तमाम होती है, बस खा लिया पी लिया सो लिया, थोड़ा बहुत काम काज कर लिया, अपने बीवी बच्चों को देख लिया या शौहर और बच्चों को देख लिया, तो ज़िंदगी गुजर गई। कौमें इसी वजह से फिर जवाल पजीर होती हैं। और दूसरी जो बात इसमें कही गई, कि पहले जिनके इरादों में खुदा की तकदीर शामिल होती थी, कि जाहिर है वो खुदा पे भरोसा करते थे, अल्लाह पे अपना ईमान था उनका, तो वो उसकी खातिर उसके कहे हुए रस्ते पर चलते हुए जब काम करते थे, तो फिर जाहिर है उनके इरादे भी बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अब क्या है, तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज। अगर गौर किया जाए सामीने कराम, हमारा भी आजकल यही हाल है, अमूमी तौर पर बात कर रहे हैं इन जनरल, कि तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, कि हम लोग भी हर चीज को तकदीर पे डाल देते हैं। अच्छा हो गया, वेल एंड गुड, हमारा बड़ा वाहवा हो गई। अगर कुछ बुरा हो गया, जी हमारी किस्मत ही ऐसी है, तकदीर में यह लिखा था। कुछ भी खराब हो जाए, हम उसको तकदीर पे डाल देते हैं, यानी खुदा ना खास
نخواستہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے اوپر اس کا الزام دھر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اپنی خامیوں کو اپنی غلطیوں کو ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے, ان سے ہم سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. دراصل ہمارا یہ خیال ہے, ہماری وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اور بس تن بآسان ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے جی بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے ٹھیک ہو جائے پھر تو صحیح ہے, لیکن خود کچھ نہیں کرنا. یہ چیزیں ہیں اس میں, ان اشعار میں یہ بتایا گیا. تو بہرحال ہمیں فون کیا تھا زاہدہ صاحبہ, آپ نے, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. زاہدہ صاحبہ آپ کے لیے ہم یہ آنے والا گیت پیش کرتے ہیں. تو فیض صاحب آپ شامل ہوئے بریک کے دوران, بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ پروگرام کو سن رہے ہیں. آنے والا گیت تو فیض صاحب آپ کے نام بھی ہم کریں گے, اور کس کے نام کریں گے, جی ہاں آفتاب صاحب آپ شامل ہوئے پروگرام میں, بہت شکریہ آپ کا بھی, یہ گیت آپ کے نام بھی. تو لیجئے, یہ بہت ہی خوبصورت سا گیت ہے اور یہ آپ سب سننے والوں کے نام کرتے ہیں. ناہید صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت آپ کے نام بھی.

मौलवी समी ने कह रहा, बहुत खूबसूरत सा सुरीला मीठा सा गीत आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत सी मीठी सी आवाज़ में, यकीनन पसंद किया होगा। महबूब इलाही साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, तहे दिल से आपके भी मशकूर व ममनून। आपने कहा कि खूबसूरत सा कोई गीत लगा दीजिए, चौधरी रुखसार साहब के नाम कीजिए और चौधरी मुजफ्फर के नाम कीजिए। तो हमें असल में किसने फ़ोन किया था, नाम क्या था उनका, जी सईदा साहिबा, आपने फ़ोन किया था और आपने कहा कि जी आप के घर में शादी ब्याह का सिलसिला चल रहा है तो कोई अच्छा सा उस हवाले से गीत लगा दीजिए। तो सईदा साहिबा, ये आने वाला गीत जो है खसूसन तो आपके लिए होगा, और महबूब इलाही साहब आपके लिए अगला गीत लगाते हैं, चौधरी रुखसार के नाम करेंगे और चौधरी मुजफ्फर के नाम करेंगे। फिलहाल सईदा साहिबा के नाम ये खूबसूरत सा गीत।

जी, ये तो शादी वाला गीत हो गया। सईदा साहिबा, उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद किया होगा। और अजरा साहिबा, आज तो माशाल्लाह से तीसरी मर्तबा आप प्रोग्राम में शामिल हुई और डेडिकेशन पे डेडिकेशन आप लगवा रही हैं, पेश कर रही हैं। अब आपने कहा कि जी जितनी आपकी दोस्त अहबाब हैं, फूलों का जो गुलदस्ता है आपका माशाल्लाह से, उसको अल्लाह हरा भरा रखे, सलामत रखे, उन सब के लिए कोई अच्छा सा खूबसूरत सा गीत लगाया जाए। तो अजरा साहिबा, आपकी जानिब से आपकी जितनी भी दोस्तें हैं, जिनमें जाहिदा साहिबा हैं, रेहाना साहिबा हैं, समीरा साहिबा, जरका साहिबा, रुखसाना साहिबा हैं, उसमें आपने बताया कि नुसरत साहिबा हैं, आपने बताया हुमैरा साहिबा हैं उनका नाम, फिर आपने बताया कौन उसमें शामिल हैं, समीना साहिबा हैं, उन सब के नाम, नाहिर साहिबा हैं, उन सब के नाम आप खूबसूरत सा गीत सुनना चाहती हैं। अजरा साहिबा, लीजिए ये खूबसूरत सा गीत आपकी तरफ से आपकी तमाम दोस्तों के लिए।

0: मौजूद सामीन कराम, उम्मीद करते हैं कि आपने इस गीत को भी पसंद किया होगा। वैसे आपको मजे की बात यह बताएं कि गीत कुछ और लिखा हुआ था यहाँ पे और लगा कुछ और। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बड़ा खूबसूरत गीत था, अच्छा गीत था। और चौधरी रुखसार साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दोबारा यह सहबारा तशरीफ लाए और आपने कहा कि जी महबूब इलाही साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा कीजिए आपकी जानिब से कि उन्होंने आपके लिए गीत लगवाया, आपका जिक्र किया, सलाम दुआ भेजा। तो महबूब इलाही साहब, उम्मीद करते हैं कि आप समाअत फरमा रहे होंगे। तो चौधरी रुखसार की जानिब से आपको सलाम दुआ और बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आने वाला गीत है वो भी हम चौधरी रुखसार साहब की जानिब से महबूब इलाही साहब आपके लिए पेश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि इस गीत को आप पसंद करेंगे। और समीन कराम, अलामा इकबाल जो है वो क्या लिखते हैं, एक फलसफा ज़्यादा सैयद ज़ादे के नाम, उन्होंने क्या लिखा कि तू अपनी खुदी अगर न खोता, जुन्नारी बरगिसाना होता, हैगल का सदफ गौहर से खाली है, उसका तिलस्म सब ख्याली, मोहकिम कैसे हो जिंदगानी, किस तरह खुदी हो लाजमानी, आदम को सबात की तलब है, दस्तूरे हयात की तलब है, दुनिया की अशा हो जिससे इशराक, मोमिन की अजा निदाए आफाक, मैं असल का खास सौ मनाती, आबा मेरे लातियो मनाती, तू सैयद हाशमी की औलाद, मेरी कफे खाक बराहमन साद, है फलसफा मेरे आबो गिल में, पोशीदा है रेशा हाय दिल में, इकबाल अगरचे बेहुनर है, इसकी रग रग से बेखबर है, शोला है तेरे जुनू का बेसोज, सुन मुझसे ये नुक्ता दिल अफरोज, अंजाम में खिरद है बेहजूरी, है फलसफा जिंदगी से दूरी, अफकार के रखवा हाय बेसौत, हैं जौके अमल के वास्ते मौत, दी मसलके जिंदगी की तकवीम, दीन सर्रे मोहम्मद तो इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल दरे सुखने मोहम्मदी बंद, ए पूरे अली जबू अली चंद, चू दीदा ए राह बीनी नदारी, कायद खुर्शी ब अज बुखारी। सामीने कराम, इसमें बहुत से अल्फाज फारसी के भी थे लेकिन बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही है। ये सारी जो फिलॉसफी है ना, जो दो तीन बड़े बड़े फिलॉसफर्स के नाम है, हेगल है, जुन्नारी है, बरगिसा है, बरगिसा का की बात की, हेगल की बात की, तो दुनिया में तो उन्हें बहुत बड़ा फिलॉसफर समझा जाता है, लेकिन इकबाल के बकौल इंसान अगर अपनी खुदी खो दे तो ये सब, ये जो फलसफा है ना, ये सब चीजें, ये जो फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, जिसको हम माजरत के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका बिल्कुल हक है इस बात से, लेकिन हमारा जो नुक्ता नजर है वो भी बयान करना, हमें भी इस चीज का हक हासिल है। तो ये जो फिलॉसफी और ये जो सूफीज्म है, ये सब का सब जो है ना, ये दीन से हट के है, ये इसके पैरेलल एक चीज बना ली गई है। तो असल बात क्या है कि आपका, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने दीन से जुड़ना चाहते हैं अगर, तो बस आप कुरान से जुड़ जाइए, आप सुन्नत जो है ना उसको अपना लीजिए, सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप अपनाएंगे, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का महीना है, और वैसे तो उनकी वफात भी, जो विसाल हुआ वो भी इसी माह मुबारक में हुआ, इस रबीउल अव्वल के महीने में। लेकिन बहरहाल हमें हुक्म क्या है, हमें हुक्म ये है कि अपनी खुदी को जिंदा रखें, उसको ना बेचें, और वो खुदी जो है ना वो आपकी आना नहीं है। हम आना और खुदी को समझते हैं कि ये एक ही चीज है, ऐसा बड़ी बहुत बड़ी ये गलत फहमी है। खुदी और चीज है, आना जो है वो और चीज है, ईगो जिसे कहते हैं ना वो और बात होती है, खुददारी जो है वो खुदी होती है, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ स्टीम जो होती है हर शख्स के अंदर होती है, हत्ता कि छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें भी अगर बुरे तरीके से पुकारते हैं, बुलाते हैं, गलत नाम से बुलाते हैं, तो बच्चे भी आपकी तरफ तवज्जे नहीं करते, वो मुतवज्जे नहीं होते हैं। यानी हर शख्स के अंदर ये अल्लाह ने रखी है खुदी, लेकिन जब इंसान इस खुदी को बेच देता है, या इस खुदी को आप कह लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि किसी के हवाले कर देता है, किसी भी लालच की वजह से या किसी भी गरज की वजह से, जो भी उसका कोई काम हो, जो भी उसकी हाजत हो, तो फिर इंसान जो है ना, इंसान हम ये समझते हैं कहलाने के लायक नहीं रहता, क्योंकि इज्जत जो है ना उससे आगे कुछ नहीं है। ये मोहब्बत और ये सब कुछ ये बात की बातें हैं, लेकिन इज्जत अगर नहीं है तो फिर मोहब्बत का भी कोई वजूद शायद नहीं होता। वो मोहब्बत मोहब्बत होती ही नहीं अगर उसमें इज्जत तकरीम एहतराम शामिल ना हो। और फिर जब बात आ जाए ऊपर वाले की, खालिक की और मखलूक की, तो वहां पे देखिए कितना फर्क। एक जहन में बात आई कि मखलूक के सामने इस खुदी को जिंदा रखने की बात की गई है, उसका हुक्म दिया गया है, लेकिन जब बात खालिक की आएगी और मखलूक की आएगी वहां पे इसी खुदी को त्याग देने की बात की गई है, सरेंडर करने के लिए कह दिया गया कि आप अपना सर जब सजदे में झुकाते हैं तो आप अपनी जो भी आपके अंदर खुदी है, ईगो है, अना है, जो भी आपके अंदर सब कुछ कह लीजिए, उसको कोई भी नाम दे दीजिए, तो फिर आप उसको अल्लाह के आगे जब सरेंडर करते हैं ना तो अल्लाह को वो पसंद है। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि ये सर सिर्फ उसके आगे झुकना चाहिए, ये खुदी जो है उसके आगे सरेंडर करनी चाहिए, लोगों के आगे नहीं। बहुत बड़ी फिलॉसफी है सामीन कराम, ये कभी इसको बैठ के सोचिएगा। आजकल तो लोग इकबाल को कहां सुनते हैं, इकबाल को कहां पढ़ते हैं, हम तो भूलते जा रहे हैं। और जो कल जैसे हमने बात कही थी कि जब हमने फिल्म बंटवारा देखी तो हमारे बेटे ने हमसे एक बात कही और बहुत सच्ची, और हमने भी इस बारे में तब सोचा, पहले इतना नहीं सोचा, कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें कोई आगे नहीं है कि किस तरह से ये मुल्क बनाया गया, उस वक्त क्या हुआ था, किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। जो दिखाया गया वो तो बहुत कम है, जो हुआ वो इससे कहीं बहुत ज्यादा था। तो आया उस नेमत की हिफाजत हम कर रहे हैं, आया उस नेमत को हम संभाल के रखने के काबिल हैं, उसकी खातिर हमने कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप जहां कहीं भी रहें, आप इंग्लैंड में रहें, अमेरिका रहें, कनाडा रहें, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जो आपका अपना वतन आपकी मिट्टी होती है उससे इंसान की जो जो एक रिश्ता होता है ना, नाता, वो कभी नहीं टूटता, इंसान उसे हमेशा याद रखता है। तो उसके लिए आपने किया क्या, हमें ये अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने बातिन में सवाल ये करना चाहिए अपने आप से कि उस वतन की खातिर, बेशक हम उस वतन से दूर बैठे हैं, बाहर जिस भी हिसाब से बैठे हैं, किस्मत कह लीजिए या अपनी चॉइस कह लीजिए या कुछ भी उसको नाम दीजिए, लेकिन उस वतन के लिए हम क्या कर रहे हैं। हत्ता कि अगर इस दूसरे मुल्क में बैठे हुए हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अपने वतन की बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि नाम पीछे हमारी जमीन का आता है, हमारे मुल्क का आता है, हमारे वतन का आता है, मिन हैसुल कौम हमें फिर जो है ना वो जज किया जाता है। तो सोचना चाहिए कि आप खा अपने मुआशरे में रह रहे हैं मुल्क में, या आप दूसरे मुल्क में दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप अपनी इज्जत को अगर आप गिरवी रख देते हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि आप गुलामी का शिकार हैं। यह हकीकत है, अल्लाह ने इंसान को गुलाम पैदा नहीं किया, उसने भी अब्द कहा। अब्द का मतलब क्या होता है, बंदा। जैसे नाम रखते हैं ना, अब्दुल्ला, अब्दुल मालिक, अब्दुल बारी, अब्दुल रहीम, तो ये सब अल्लाह की सिफात हैं, अल्लाह के नाम हैं, तो फिर अब्द कह दिया जाता है, रहीम का बंदा, रहमान का बंदा, बारी का बंदा। तो अब्द कहा, गुलामी अल्लाह को पसंद किसी सूरत में भी नहीं है, इसीलिए उसने हमें इरादा इख्तियार दे दिया। हमारी मर्जी है, हमारा इरादा, हमारा इख्तियार, हम उसे नेक तरफ भी ले जा सकते हैं, यानी अच्छे और सच्चे रास्ते की तरफ भी, या हम उसको गलत रास्ते की तरफ ले जाएं, इस्तेमाल करें, हमारी अपनी मर्जी है। इसी की पूछ की छोनी है, इसी का हमें जवाब देना है। वो इकबाल ही ने कहा था ना, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। तो इस बात को अगर आप सामने रखिए कि सर ये झुकना चाहिए किसकी आगे, अल्लाह के आगे, दाता वो, मालिक वो, खालिक वो, राजिक वो, गौस वो, सब कुछ वो है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी जात तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम किस तरफ भटक रहे हैं, हम अपनी खुदी को बेचते हैं, कभी किसी की तरफ, कभी किसी के दर पे, कभी किसी के दर पे, कभी किसी की चौखट पे, ये खुदा को खुद नापसंद है। और वही जो बात जहन में एक आई और हमने आपके आपसे शेयर भी की कि अल्लाह ये चाहता है कि अपनी खुदी को इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक, अपने मालिक के आगे सरेंडर करे, और किसी के आगे नहीं। इज्जत करना, एहतराम करना, तकरीम करना, वालिदैन हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरे लोग हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आप अपनी इज्जत नफ्स को अगर आप बेच देते हैं खुदा ना खास्ता, या उसको गिरवी रख देते हैं किसी भी गरज, किसी भी मतलब, किसी भी काम के लिए, तो फिर इंसान जो है ना वो कहीं का नहीं रहता। ना मालिक और खालिक को ये बात पसंद है, और ना ये दुनिया जो है ना, ये लोग जिनके आगे आप अपनी खुदी को सरेंडर करते हैं, उसको ये बात उनको पसंद आती है, और फिर वो लोग आप उनकी ठोकर पे होते हैं। यकीन जानिए, इस नुक्ते को अगर इंसान समझ ले कि सिर्फ और सिर्फ उसने एक खालिक, एक मालिक जो है ना, उसके आगे सर झुकाना है, उससे मांगना है। दाता भी वही है, अनदाता भी वही है, देने वाला वही है और कोई नहीं। आपको उस तक पहुंचने के लिए कोई वसीला नहीं चाहिए, कोई जरिया नहीं चाहिए आपको। वो आपकी शहरक से भी करीब है। डायरेक्ट उससे मांगिए, उसको पुकारिए, यही तो उसकी खूबी है। उसे ना नींद आती है ना ऊंघ, वो हर चीज से बाखबर है, जो हमारे आगे हो रहा है, जो हमारे पीछे हो चुका, जो होने वाला है, वो हर चीज को जानता है। वो अलीम है, वो खबीर है, वासे है। तो सोचिए आप कि हम किस तरफ चले जाते हैं, अगर हम उस दर को छोड़ के किसी भी और तरीके की तरफ जाते हैं, किसी भी और रास्ते की तरफ जाते हैं, किसी भी और हस्ती की तरफ जाते हैं। हत्ता के अल्लाह ताला ने तो साफ कह दिया, कुरान को पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, कि वो अंबिया जो है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। उनका काम था दावत पहुंचाना, पैगाम पहुंचाना। रसूल किसे कहते हैं जो पैगाम लेके आता है? पैगंबर किसे कहते हैं जो पैगाम आपका अल्लाह का वही के जरिए जो उतरी वो आगे पहुंचाते? तो उनका काम यही था, हक की तरफ बुलाना, सच्चाई की तरफ बुलाना, बस। इससे आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और हम ना जाने किधर किधर किधर भटक गए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे, माफ फरमाए हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी लग्जिशें, और हमें उस एक मालिक और खालिक जो है ना, उसके आगे अपना सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हम उससे मांगे, कुछ भी मांगना है आपने, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, वो शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है। इसका मतलब है कि हम खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, कि उसकी शान में गुस्ताखी करते हैं अगर उसको छोड़ के हम किसी और तरफ से मांगते हैं कुछ। फिर वही बात आ जाएगी, बहुत से लोग दलील पेश करते हैं कि जी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा कोई मसला है लीगल, तो हम वकील को हायर करते हैं, उसकी खिदमात लेते हैं। दुनियावी तौर पे जो दुनियावी हाजात हैं छोटी मोटी, उनमें किसी की मदद तलब करना कुछ ऐसा गलत नहीं है, लेकिन ये समझना कि वही डॉक्टर शिफा देने वाला है गलत, ये समझना कि वो वकील हमारा मसला हल कर देगा गलत। सब कुछ करने वाली जात ऊपर बैठी है, उसने एक जरिया बना दिया बस इंसानों का इंसानों के साथ। ये दुनियादारी है, ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया का असूल है, दुनिया एक कायदे कानून के मुताबिक चलती है। सामीने कराम, कभी गौर कीजिएगा इसे, ये अल्लाह ताला ने ऐसे अटकल पच्चू जिसे कहते हैं ना, वो चीजें नहीं बना दी। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, रात अपने वक्त पे आती है, दिन अपने वक्त पे ढलता है, चांद सितारे जो हैं वो अपने अपने मदार के गिर्द हरकत करते हैं। तो ये तो अल्लाह की निशानियां हैं, ये पूरी की पूरी कायनात उसकी निशानियां हैं। इन पे गौर कीजिए, इन पे तवज्जो दीजिए, तदब्बुर कीजिए, तफक्कुर कीजिए, आप बहुत से मसाइल से बच जाएंगे, बहुत सी परेशानियां जो हैं आपकी, जिसे कहते हैं ना कि पल भर में गायब हो जाएंगी, जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपने अपनी खुदी नहीं बेचनी, आपने अपनी खुदी किसी के आगे सरेंडर नहीं करनी, मां सिवा अपने खालिक, अपने मालिक। फिर देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। अगर नहीं भी बनते तो हमेशा याद रखिए, दुनिया का कानून है, यहां परेशानियां आएंगी, तकालीफ आएंगी, उनको हौसले से बर्दाश्त कीजिए। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।
1: Number one Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274 494 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677.

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मेनिंगम सुपर स्टोर,
3: मेनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

Number 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। आज 12 रबी अव्वल है। आज का दिन हम सबके लिए किस कदर मोहतरम है उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। मोहसिन इंसानियत सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का यौम विलादत है। अरबी में मीलाद पैदाइश को कहते हैं, इसलिए अगर आप कभी अरबी के पासपोर्ट या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तारीख अल मीलाद लिखा देखें तो उसका मकसद है यौम पैदाइश। आज दोनों जहानों के सरदार अल्लाह के महबूब शाफ़े मैशर साकी कौसर नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आज का ये यौम विलादत हमसे ये तकाजा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली पैगाम पर अमल पैरा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी बेहतरी खैर नेकियों भलाइयों और इंसानियत पे मबनी दीगर आला सिफात से मुनव्वर कर सकें। खुसूसी प्रोग्राम यौम विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हाजिर हूँ। कबूल कीजिए रोशनी के मेज़बान रिफत अब्बास का अपने तमाम ही बुजुर्गों बहनों भाइयों बेटों बेटियों बच्चों और तमाम ही सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मेरी इंतहाई गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, इब्तिदा उसके नाम से जो हम सब का मालिक है खालिक है पालनहार है राजिक है, वही जो हमारी छोटी से छोटी खता और बड़ी से बड़ी गलती को देखता है सुनता है और उसे दरगुजर करने की कुव्वत रखता है। यकीनन वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है।

हाँ समाप्त फरमाए। तारीखी बात।

0: समातिया।
1: वाह,
0: तो जश्न मना।
1: अल्लाह,
0: जश्न मना। कुदरत ने हर मुश्किल को आसान किया, अर्श ने खुशखबरी भेजी, जमीन ने ये ऐलान किया।
1: क्या?
0: कि अब्दुल्ला के घर से

और समाचार में जब ये खबर सुनी कि दुनिया में आकाए नामदार हुजूर अकरम पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मलायक जिन्न इंसान जमीन और आसमान चांद और सितारे कहकशां ये तमाम के तमाम किस तरह खुशियां मना रहे थे समाज फरमाए।

0: अल्लाह
1: प्यारे नबी
0: वाह
1: मुंतजर जिसके सभी आने वाला है वही आने वाला है वही तो झूम रही दुनिया तेरा मुकद्दर।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं जश्न आमद रसूल का खसूसी प्रोग्राम जिसे आपकी खिदमत में बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में और दुनिया के चार कोने में ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर पेश किया जा रहा है।

0: दोस्तों, आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम वजह तख़लीक़ कायनात की इस दुनिया में आमद के पुरमसर्रत मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आप सब की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे। हमारे हमराह मौजूद हैं अमरोहा के चलती फिरती तारीख जनाब हाजी शबी अहमद नकवी साहब दामन बरकातहू मुद्दा जिल्ला रहे, उनके हमराह मौजूद हैं अहले खाना जिसमें जनाब खुसरो बाबर अनस मोहतरमा शिबी मोहतरमा निघत साहिबा और नन्नी मुन्नी हमारी मैना जैना और मोहम्मद दयान आपका हदिया और जो नाते रसूल मकबूल मैं बारगाह रिसालत मआब में आज के इस मुबारक मौके पर पेश करूंगा उसमें हम अपने शहजादे अशमल को कैसे भूल सकते हैं। अल्लाह ताला उसका अजर उनकी रूह को और उन तमाम अहबाब की रूह को जो जहां फानी से कूच कर चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए। साथ ही साथ अभी चंद दिन पहले हमारे बड़ी मोहतरम शख्सियत ब्रेडफोर्ड के जनाबे राजा अब्दुल हमीद कियानी साहब इस बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौका है तो मैं दुआ की दरख्वास्त करूंगा। इस जहान फानी से आप कूच कर गए और सजदे में इस जहान फानी से रुखसत हुए, अल्लाह ताला उनके और तमाम वो अहबाब जो अब तक इस जहान फानी से कूच कर चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए और बतौर ख़ास हमारे शहजादे अशमल मियाँ की रूह को भी इसका इसाले सवाब पहुँचे। कमर्शल के बाद इंशाअल्लाह आप सब की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम अपने मुअम्मर तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब दामन बरकातहू मुद्दा जिल्ला अलैह जो अमरोहा से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं, हम उनकी जानिब से बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न सिर्फ नातिया अशआर बल्कि उनका हदिया आज के इस मुबारक और पुरमसर्रत मौके पर पेश करेंगे।
1: रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

और दोस्तों अब हम बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात के गुलहाए अकीदत लेकर चल रहे हैं अपने बहुत से सुनने वालों और बतौर खास हमारे मोअम्मर तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी और अहल खाना की जानिब से जो हमारी बज़्म में शामिल हैं और दुआ की दरख्वास्त है। दुआए मग़फ़रत फरमाइए हमारे शहजादे अशमल शहीद के लिए जो बहुत कम उम्र में हमारा साथ छोड़ गए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़रत फरमाए और खुदाबंद करीम राजा अब्दुल हमीद कियानी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उन तमाम लोगों के जो जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं इस नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर उनकी रूहों को ईसाल सवाब के तौर पर पहुंचे। मुझ पर शहे बतहार की अगर चश न करम हो मुझ पर

हर जर्रे को मैं पल को से चूमूं सरकार का

שיש בעיות,

Absolutely.

0: دوستو آپ جشن میلاد النبی کا خصوصی پروگرام سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس۔ آپ سے ملاقات ہوگی کمرشل کے بعد، جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کھاڑیاں گجرات سے آئے ہوئے ہمارے مہمان پردیسی مجید صاحب کا، جنہوں نے تمام اہل ایمان کو آج کے مبارک دن کی مبارکباد اور محبت بھرا سلام کھاڑیاں پنجاب سے بھیجا ہے، ان کا ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔
1: On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

दोस्तों, इसके साथ ही जश्न आमद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अध्याय तमाम अहले ईमान की जानिब से बारगाह रिसालत मआब में अब इख्तिताम पजीर होता है। आइए हम सब मिल के दुआ करें कि क़यामत के दिन हम सबको शिफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम नसीब हो और अल्लाह ताला हमें उनकी सीरत नबवी से फैज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए। बारे लाहा, हम गुनाहगार हैं, हम स्याहकार हैं और तुझ पर ही निगाह लगाए बैठे हैं। लफ्ज़ बेबस ज़बान है माजूर, हमसे ज़िक्र हुजूर क्या होगा। हो कनारा न जिस समंदर का, वो समंदर उबूर क्या होगा। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को अब इस खुसूसी प्रोग्राम से रोशनी से इजाज़त। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़ो नासिर। शब्बा खैर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफवे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
3: मेनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

मेरा चाँद मुझे आया है नज़र, मेरा चाँद मुझे आया है नज़र, ए रात ज़रा थम थम के गुज़र। बहुत ही खूबसूरत गीत सामिन आपने समाप्त फरमाया। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, आने वाला गीत भाई शहज़ाद साहब आपके नाम करेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम ये गीत होगा। इस दौरान चौधरी मुजफ्फर साहब आप शामिल हुए प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो आपके नाम भी दोबारा एक और गीत करते हैं।

सामिन अभी आप समात रहे समात कर रहे थे शबीर कमार की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गीत। इस दौरान हमारे साथ से चौधरी रुखसार साहब, उनसे बात हो रही थी, इसीलिए ये ज़रा आने रहने में थोड़ा हो गया लेट। और आने वाला गीत जो साहब ने कहा है, मेरी तरफ से कोई भी प्यारा सा गीत जो है ना, सब दोस्तों के नाम करना है, भाई शकील के नाम और चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम होगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम भाई चौधरी साहब साहब। बहुत ही प्यारी बातें होती हैं, करते हैं बहुत ही माशाल्लाह, बड़ी तारीफ और बड़े प्यार से फ़ोन करते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ आता है। ऐसे मोहब्बत प्यार करने वाले दोस्त जब भी कॉल करते हैं तो हौसला और बढ़ जाता है। तो ये गीत आपके नाम करेंगे, हमने क्यों कर लिया है अभी जनाब गीत, ये आपकी तरफ से चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी होगा और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के नाम ये गीत करेंगे। बहुत ही प्यारा गीत है, कभी हमने ये गाया भी था अपने वक्त में, जब उस वक्त हम शौक रखते थे गीत गाने का। तो ये गीत आपके नाम करते हैं और आपकी तरफ से जितने भी साहब दोस्त हैं सभी के नाम ये गीत करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, एहसन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, मुझे लगता है यही है। आइए सुनते हैं।

0: तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म दीवाना से लिया गया, उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। दिव्या भारती की ये पिक्चर थी, बहुत ही मशहूर अपने वक्त की, और उसके इसी अरूज पर ही उसने बाद में कुछ खुदकशी की थी, क्या हुआ था। तो बहुत ही फनकार ज़बरदस्त से इसकी फिल्में आ रही थी उस वक्त, तो उस पर ये फिल्म बनी थी, शशि कपूर और दिव्या भारती पर। और उम्मीद करते हैं ये गीत आपको पसंद आया होगा। फिल्म भी बहुत सुपरहिट रही थी। और जनाब क्योंकि वो अभी वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था। अब मिलते हैं ब्रेक उस पार, हमारे साथ रहिएगा।
1: At bradfordasianradio.co.uk, this is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले
0: पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कैसे हैं जी भाई शकील साहब? आपको तालियों के गूंज में खुश आमदेद कहते हैं।
1: शुक्रिया अल्लाह। दुआएं आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। जितना भी उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है, उसका एहसान है बहुत।
1: सब तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम सब।
1: अगर साले सलीम साहब सुन रहे हो तो अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, जहांगीर भाई है, आसिफ यासर साहब है, नवीद भाई हैं, तारिक पाठ हैं, तारिक सुल्फी साहब, इकबाल भाई, और भी जितने सुनने वाले हैं सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साहब की तरफ से।
1: बात ठीक आ रही है
0: जी? जी आवाज़ ठीक है।
1: तो ये एक फरत बादशाह उनकी गजल है
0: जी।
1: वो कहते हैं, तुम जो होते तो हमें कितना सहारा होता।
0: वाह।
1: तुम जो होते तो हमें कितना सहारा होता, हमने औरों को न यूं दुख में पुकारा होता।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शुक्रिया। मुझको ये सोच ही काफी है जलाने के लिए, मैं न होता तो कोई और तुम्हारा होता।
0: वाह वाह, मैं न होता तो कोई और तुम्हारा होता।
1: और हम बैठ के खामोशी से रोए जाते। और हम बैठ के खामोशी से रोए जाते, शाम होती किसी दरिया का किनारा होता।
0: वाह वाह, शाम होती किसी दरिया का किनारा होता, बहुत खूब बहुत खूब।
1: दिल से देखी नहीं जाती थी खामोशी घर की, किस तरह उजड़ा हुआ शहर गवारा होता।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: चांद होता कि मेरी जान सितारा होता,
0: चांद होता कि
1: हमने एक तेरे सिवा दिल से उतारा होता।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: तूने सोचा है कभी कितना मोहब्बत के बगैर, तूने सोचा है कभी कितना मोहब्बत के बगैर, रू फरसा दिले वीरान का नजारा होता।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते, जितनी शिद्दत से मैं वाबस्ता था तुमसे फरहत, जितनी शिद्दत से मैं वाबस्ता था तुमसे फरहत, किस तरह मेरा तेरे बगैर गुजारा होता।
0: वाह वाह, किस तरह मेरा तेरे बगैर गुजारा होता। वाह वाह, बहुत।
1: तो एक पंजाबी भी सुना देना
0: जी। जी अरशाद।
1: एक बार रात लिखने वाले हैं
0: जी।
1: कहने ने विछोड़े दे दुखड़े उठाना रे असा।
0: हाय हाय हाय हाय।
1: विछोड़े दे दुखड़े उठाना रे असा, सदा रोग दिल दा लुकांदा रे असा।
0: आहा वाह।
1: मैं सोचा दी सूली ते अजला मैं टंगिया, मुकद्दर न बनिया मनांदा रे असा।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जदू यार महफिल परी भी सी तकिया,
0: मेरे सामने शौक बैठा रहा सी, वाह।
1: मैं शेरा दी दौलत लुटांदा रहा सा।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: ओदा जलवा को तूर दा है।
0: वाह वाह, ओदा जलवा को है
1: तूर दा है। ओदा जलवा को तूर दा है, मैं तकदा ते होशा गवांदा रहा
0: सा। हाय हाय हाय हाय, वाह वाह बहुत खूब।
1: ओदा जलवा को तूर दा है, मैं तकदा
0: वाह,
1: मैं तकदा ते होशा बड़े लाए सन जख्म लोकां ने राहत, बड़े लाए सन जख्म लोकां ने राहत, मैं हस के ही कड़ियां लंघांदा रहा।
0: वाह वाह वाह वाह, मैं हस के ही कड़ियां लंघांदा रहा। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: एक बार रात एक पंजाबी दे सेट, ठीक है। बड़ी मेहरबानी,
0: बड़ी मेहरबानी जी भाई शकील साहब, तुसीं लिआउण दा बहुत शुक्रिया। और पंजाबी तो फिर टापो टाप गिर लाता जगह। बहुत जबरदस्त पंजाबी का भी जो कलाम था, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया कि तालियों के गूंज में हम आपको अलविदा करते हैं। अपना बेटा ख्याल रखिएगा जी जनाब, बड़ी जबरदस्त आपको आसानी में आपने सुना जी, कितनी जबरदस्त शायरी थी जो लेके आए भाई शकील साहब। और हमें हर ٹیوزڈے کو ہر پروگرام میں ہم تشریف لاتے ہیں اور پیاری سے پیارے ایسی شاعری اور غزلیں لے کے آتے ہیں, اور آج جو پنجابی کا تھا وہ دیکھیں نا, وہ کمال کی تھی, اور اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے بھائی, اپنا اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور اسی طریقے سے تشریف لاتے رہیں اور محفل کو چار چاند لگاتے رہیں. بہت شکریہ بھائی شکیل صاحب, ٹائم آپ اسپیشل نکال کے تشریف لاتے ہیں, اس کے لیے بہت مشکور ہیں ہم آپ کے. اب بھائی شکیل صاحب, اب وہ جو چودھری رخسار صاحب کا بھی کال آئی تھی, انہوں نے بھی آپ کی بہت تعریف کی تھی. پہلے بھی بولتے ہیں مزہ آ جاتا ہے جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں, وہ آ جائیں تو پھر محفل مکمل ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے بھائی رخسار صاحب بھی تشریف لائیں, پہلے آف ایئر ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ گیت ہماری طرف سے سبھی دوستوں کے نام کر دیجیے, اور آنے والا گیت ہم نے کیوں کر رکھا ہے بھائی شکیل صاحب آپ کے نام کریں گے, بھائی رانا صاحب نوید رانا صاحب لگتا ہے سو گئے ہیں, ان کے نام بھی ہوگا, یا کبھی کبھی بیزی ہوتے ہیں, بولتے ہیں کہ میں کبھی کبھی بیزی ہوتا ہوں نہیں آ سکتا, تو چند اشعار ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں. پھر نیند بلا کب آتی ہے, پھر نیند بلا کب آتی ہے جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہوں, پھر نیند بلا کب آتی ہے جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہوں اور اپنے آنکھ سے اوجھل ہوں, اور اپنے آنکھ سے اوجھل ہوں, پھر نیند بلا کب آتی ہے جب دل میں بسنے والے بھی, جب دل میں بسنے والے بھی اور ساتھ میں ہنسنے والے بھی, جب دل میں بسنے والے بھی اور ساتھ میں ہنسنے والے بھی, جب دور کہیں وہ بستے ہوں, جب دور کہیں وہ بستے ہوں کسی اور کے ساتھ وہ ہنستے ہوں, جب دور کہیں وہ بستے ہوں, جب دل میں بسنے والے بھی اور ساتھ میں ہنسنے والے بھی, جب دور کہیں وہ بستے ہوں

0: सामिन अभी आप समात कर रहे थे अपने महबूब की तस्वीर बनाने के लिए, अपने महबूब की तस्वीर बनाने के लिए मैं चली रंग गुलाबों से चराने के लिए, मैं चली रंग गुलाबों से चराने के लिए। बहुत ही प्यारा गीत था, आपने समाज पर फरमाया, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में था। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। और जनाब आपको पता है ये प्रोग्राम होता है ऑन एयर कॉलों का, इसमें शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए पहले भाई शकील साहब, बहुत ही प्यारी शायरी सुनने को मिली, और भाई राणा साहब आज तो मेरा ख्याल में थोड़ी लेट हैं या बिजी हो गए, उन्होंने रब्ता नहीं अभी तक किया, और जनाब तशरीफ़ ला चुके हैं भाई चौधरी रक्सार साहब, उनको तालियों की गूंज में खुश आमदीद कहते हैं और देखते हैं वो हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं शैतान अमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जनाब मोहतरम माली जनाब इज्जत मां बामकार बाजोक बाशोक हर दिलजी शख्सियत बहुत लतीफ बहुत नफीस और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज्जत प्यारे भाई महबूब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात।
0: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: जनाब कैसे हैं आप?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, जितना भी उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है जी।
1: मेरी आवाज भी आपकी माशाल्लाह ठीक पहुंच रही
0: जी
1: है?
0: जी बड़ी आवाज बिल्कुल।
1: अच्छा अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत, और माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम, बहुत मियारी, बहुत उम्दा, माशाल्लाह बहुत आला जी, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत आपने जो सुन सुनाए हैं माशाल्लाह, क्या कहने लाजवाब माशाल्लाह। मैं सिर्फ सुन रहा था लेकिन बस मैंने आपको कॉल भी की थी, आप लिए भी माशाल्लाह, क्या कहने आपके,
0: बहुत शुक्रिया।
1: और माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब किबला मेरे लिए नहायत ही वाजिब एहतराम वाजिब इज्जत है जनाब मोहतरम शकील साहब आए थे माशाल्लाह हैं जी, क्या खूबसूरत उन्होंने उर्दू की शायरी और माशाल्लाह पंजाबी की शायरी में उन्होंने क्या कहने लाजवाब।
0: पंजाबी तो कमाल थी जी, पहले भी कमाल थी, पंजाबी उससे भी ज्यादा जबरदस्त।
1: नहीं सही बात है, बाकी इसमें कोई वो कहते हैं ना कि शक शुबात वाली बात नहीं है माशाल्लाह, जितने खूबसूरत अंदाज में वो कहते हैं ना कि वो ऑलराउंडर है मोहतरम शकील साहब की, वो हर माशाल्लाह और इतनी खूबसूरत उनका माशाल्लाह जो बात करने का अंदाज माशाल्लाह, और बहुत अच्छा इल्म अल्लाह ताला ने उनको कैसे इल्म से नवाजा हुआ यकीन करें जी, तो ऐसी शख्सियात जो होती है माशाल्लाह वो प्रोग्राम की जीनत होती है, कई हाल उनकी वजह से ये प्रोग्राम में माशाल्लाह चार चांद लग जाते हैं,
0: हमारा दिल खुश हो जाता है जब तशरीफ लेके आते हैं, तो
1: बिल्कुल ऐसी है, और उनके लिए दिली दुआ होती है कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात माशाल्लाह ऐसी हस्तियों को और माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी का फरमाए, और ऐसे माशाल्लाह बुजुर्गों का सारा हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम रहे,
0: आमीन आमीन।
1: तो सभी के लिए, और मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, और माशाल्लाह मुझे पता है कि हो सकता है राणा रणवीर साहब भी आए माशाल्लाह, और भी काफी लोग होते हैं जो माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में आते हैं, अगर टाइम भी आपका मेरा हाले आखिरी आवर ही होता है जिसमें सभी में आना होता है
0: जी जी, कोई नहीं बात चलता है
1: जी। आप तो सबसे पहले तो आपकी माशाल्लाह ब्रेड फ्रोड एशियन रेडियो की पूरी टीम को और माशाल्लाह जितनी समाते हैं आपका माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम सुन रही है, और यकीन कीजिए कि आज है भी रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल है जो है जनाब अरसाल के नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से अथाह दिल की गहराइयों से हमारे आका हमारे मौला सरदार अंबिया सईदुल अंबिया सईदुल मुसल्लीन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बहुत बहुत मुबारक।
0: खैर मुबारक जी आपको भी, सभी को
1: जी, और जनाब सैयद इतराब अदर साहब हैं माशाल्लाह, और सैयद हसन शाह साहब हैं, मोहतरम शकील साहब हैं, जंगीर भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, और हमारे प्यारे भाई महबूब तो साहब के साहब के महबूब भाई, तो मैं साहब का महबूब कह रहा हूँ बेटा, बाकी आप समझ जाए।
0: बहुत शुक्रिया,
1: चौधरी फरियाज साहब है, राणा नवीद साहब है, और हमारे चैंपियन है जनाब परवेज भाई हैं, सभी को मेरी तरफ से जनाब रबी लवल की और अथाह दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम सभी की तरफ से।
1: तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आप टप्पे माइये सुना दूँ, अगर
0: जी सुना दें जी, कोई भी मैं अक्सर कहता हूँ हीर वारिशा हो जाए टप्पे माइये, जो भी आप गा सकते हैं पढ़ सकते हैं वो सुनाए आप, ये महफली से
1: हर किस तरह के हर जरा प्रोग्राम होता है उसका फरमेसिस होता है, और माशाल्लाह वो क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा होता है ना उसी हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आप अभी फरमा रहे हैं कि जो भी आपको माशाल्लाह आता है जो माइये टप्पे गाने जो भी होता है माशाल्लाह वो आप सुना सकते हैं
0: जी,
1: तो जाओ सरकार
0: जी। अच्छा,
1: और कोई वे वग दीन रोवे, कोई वग दीन रोवे, इश्क दे मारियां दा शाला वखरा शरोवे। इश्क दे मारियां दा शाला वखरा शरोवे।

0: ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਛੱਡਾਂ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇ ਟੋਟਾ ਤੀਨਾ ਦਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਮਸਕੀਨਾ ਦਾ
1: ਵਾਹ ਵਾਹ
0: ਕੋਈ ਵੇ ਲੱਕੜ ਸਫਾ ਕੀਤੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ
1: ਵਾਹ
0: ਉਹ ਕੋਈ ਵੇ ਰਕਸ਼ ਪੁੱਲ ਟੱਪਿਆ ਕੋਈ ਵੇ ਰਕਸ਼ ਪੁੱਲ ਟੱਪਿਆ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਜੈ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੱਚਿਆ
1: ਵਾਹ
0: ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਜੈ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੱਚਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿਬੂਬ ਲਾਈ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
1: ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ
0: ਬਹੁਤ ਬਿਆ ਛੁਰਾ ਸੀ
1: ਜ਼ਬਰਦਸਤ आपके लिए बहुत सी और बड़ा मजा आया साथ साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया था
0: तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का चलो ठीक हो गया टाइम फिर खत्म हो गया अल्लाह की
1: हाँ जी
0: तो अपनी दुआ में ये बहुत याद रखिएगा आप हमेशा मेरी दुआ में रहते हैं
1: ठीक है जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बहुत
0: शुक्रिया
1: ये थे जी भाई चौधरी रक्सार साहब
2: UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
3: Uff, itni pyari pyari khidkiyan aur darwaze, kya hi choice hai aapka?
4: Ye choice hamara nahi, ye to kamal hai, first choice windows Yorkshire ka.
3: Jo ke paydar, mazboot, khoobsurat, double enterprise glazed windows and doors ke ilawa, composite doors se aapke gharo ko chaar chaand lagate hain.
4: Aur property value badhate hain.
3: First choice,
4: 106 Lister Hills, Bradford, BD71JL.
3: Gharo ki khoobsurati aur hifazat badhaiye, aaj hi first choice ka number milaiye.
4: 01274317644.
5: For quality, value, style and security, your number one choice, first choice, windows Yorkshire.
6: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
4: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
6: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
4: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
6: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY
4: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK दुल्हन वो जो पिया मन भाई
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
6: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
6: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
6: आपकी शान
4: हमारी आन
6: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
6: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
6: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679
6: safewayrider.co.uk

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

ना मिलो ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए, ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो न जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज़ में आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना सामईन। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। आने वाला गीत जनाब भाई जहीर साहब आपके नाम करेंगे और भाई तनवीर साहब आपके नाम भी यही गीत होगा।

साथ साथ आपको पता है ये शायरी भी साथ साथ चल रही होती है, ये स्पेशल चौधरी मुजफ्फर साहब की फरमाइश पर होती थी, अब हमारी लगता है आदत हो गई है। हम ही में ना कोई बात याद ना तुमको आ सके, हम ही में ना थी कोई बात याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें बुला दिया हम ना तुम्हें बुला सके, तुमने हमें बुला दिया हम ना तुम्हें बुला सके, तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन, तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन, किसकी ज़ुबान खुलेगी फिर हम ना अगर सुना सके, किसकी ज़ुबान खुलेगी फिर हम ना अगर सुना सके, होश में आ चुके थे हम जोश में आ चुके थे हम, होश में आ चुके थे हम जोश में आ चुके थे हम, बज़म का रंग देखकर सर ना मगर उठा सके, बज़म का रंग देखकर सर ना मगर उठा सके, अहले ज़बां तो हैं बहुत, अहले ज़बां तो हैं बहुत कोई नहीं अहले दिल, अहले ज़बां तो हैं बहुत कोई नहीं है अहले दिल, कौन तेरी तरह हफीज़ दर्द के गीत गा सके, कौन तेरी तरह हफीज़ दिल के गीत गा सके, हम ही में थी ना कोई बात याद ना तुमको आ सके, हम में ही ना थी कोई बात याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें बुला दिया तुमने हमें बुला दिया हम ना तुम्हें बुला सके, हम ना तुम्हें बुला सके।

यह गीत सामिन आप सभी के नाम होगा और इस गीत के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। भाई शकील साहब कॉल करने का बहुत शुक्रिया, भाई रुखसार साहब आपका भी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और चौधरी मुजफ्फर साहब आपका भी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, और जितने भी साथी सामिन सुन रहे हैं सभी के नाम ये आने वाला गीत होगा। भाई राणा साहब आपकी गैर हाजिरी लग गई आज और आइंदा आपका इंतज़ार रहेगा। यही गीत आइए सुनते हैं, खूबसूरत गीत, और साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
6: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
7: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM, and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.